0: form is the Guru Granth. Speak with the true Guru through the Shabad. Pronounce, sing, and chant the Naam. If you have the darshan of the Khalsa, you will have my darshan. When you sing the Shabad from the Guru Granth, you are speaking to me. Just as there are 12 months, I have 12 forms. 10 forms of Nanak, the 11th is the Khalsa, and the 12th is the Guru Granth. The power of God is alive in the Guru Granth and the Khalsa Panth. Servant Gobind declares the victory of the true Guru. The Granth is the form of the Guru.
1: Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh.
2: You are listening to SeekNet Radio. Right now, we need your help to continue to provide this service to thousands of people all around the world, every single day. If you enjoy this free service, please take a moment right now and go to www.seeknet.com/donation and show your support. Thank you.
3: आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। आज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि आज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी ऐनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर वो आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ कर दी है, इन्ना नाम जप दी है कि सचमुच उस दे कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वो दूजे लोकां विच सफर कर सकती है।

0: उसकी शक्ति जाग पैंदी है। जिंद कौर अपने आप नू एक रोशनी दी धुन भरी दुनिया विच पाउंदी है।
1: मैनू इत्थे बहुत शांत महसूस हो रहा है।
0: हैरान होके वो देखती है कि ए नूरानी सिख बीबी उसके सामने है।
1: तुसी कौन हो ते मैं किथे हां?
2: असी शहीदां दे मंडल विच हां।
1: ए शहीद कौन होंदे हन?
2: शहीद ओ हुंदे हन जो अपनी अभिलाषा नाल सच दी खातर अपनी जान कुर्बान कर दिंदे हन। मेरा नाम शरण कौर है। तुहाडी तरह मैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी धी हां। उन्होंने मैनु कहा कि मेरी कहानी तुहाडी मदद करेगी। की परेशानी है छोटी भैन, की होया?
1: मैं पहले दिन नवे स्कूल गई सी जिथे मेरी तरह दा कोई नहीं दिखदा। कुछ कुड़िया मेरे को आईया ते मेरी दस्तार खोलन की कोशिश की ते मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिता। मैं बहुत दुखी सी ते मैनु पता नहीं सी लगता कि मैं की करा। इसलिए मैं वाहेगुरु जी नु कहा कि तुसी मैनु मार्ग दिखाओ। आप जी दी की कहानी है?
0: बीबी शरण कौर गंभीरता नाल जिंद कौर दी अखां विच देखते हन ते गल शुरू करते हन।
2: मैं जंग दे समय जिउंदी सी।
0: जिंद कौर हुण अपने सामने अपनी नवी सहेली दी जिंदगी इस तरह देख सकती है जिवें कि वो टीवी ते आ रही होवे।
2: जदों मैं 16 सालां दी सी उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छड्डिया सी ते दुश्मनां दी फौज ने निश्चा कर लिया सी कि ओ सानू सिखां नू इस धरती तों मिटा देणगे अते गुरु साहिब जी नू भी मार देणगे।
3: खत्म कर दिओ इन्हां नू।
2: गुरु जी उन्हां दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी अते कुछ दर्जन खालसे नेड़े दे एक शहर विच जा पहुंचे। वो सब एक किले विच सन जिसका नाम सी चमकौर। अते शाही फौजां जिन्हां विच लखां दी गिणती विच सिपाही सन उन्होंने किले नू चारे पासों घेरा पाया होया सी। ए सब अग दे समुंदर विच शांति दे टापू वांग जापदा सी।
4: सत श्री अकाल।
2: पंजां दे समूह विच खालसा अपने गुरु अगे शहीद होने की दाद की बेनती करता है।
5: गुरु साहिब जी अगली सेवा साड़ी लगाओ जी।
6: सानू शहीदी की दात बख्शो जी ता जो असी इस जीवन के असल मंतव धर्म की जंग खातर लड़ सकी फतेह प्राप्त कर सकी।
2: फिर गुरु साहिब ने कहा तुहाडे उपर बेअंत कृपा है। एक खिण लई भी डरियो ना ते तुसी सीधा गुरु नानक की झोली विच जा वसोगे। ध्यान रखियो कदे भी पिठ नहीं दिखाउणी। जिवें मीह दा पानी तेजी नाल किसे ताल च डिगदा है तिवें खालसा बेखौफ मैदान विच उतरिया ते अकाल पुरख विच समा गया। उन्हां दीआं आत्मा स्वर्गां विच इदां चलिया गईआं जिवें एक चिड़ी आकाश विच। मेरा हिरदा एह खूबसूरती देख गलबा गया। मैं यही अरदास करती रही कि मैं भी उन्हां वांग ही हो जावां। मेरी सिर्फ एक इच्छा सी उन्हां नाल किले विच होना। मैं अकाल पुरख नाल वादा किया सी कि मैं भी इन्हां वांग निरपै होवांगी। हे मेरे पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं केवल एक पासे बैठ के ये सब नहीं देख सकती। कृपा करो मैनू भी अपने पुता वांग शहीदी की दात बख्शो जी। मैं अपने अंदर एक कोमल जिही आवाज सुनी। मैनू तुहाडे उत्ते माण है मेरी प्यारी धीए। तैयार रहो तुसी मैनू छेती ही मिलोगे। मैं जानती सी वो आवाज किसती सी। मैनू इउं महसूस होया जिवें मैं पूरी दुनिया की राणी होवां। गुरु पिता जी ते कुछ सिख जो रह गए सन दूजी थां कूच कर गए। दुश्मन उन्हां नू कदे भी फड़ ना सके। अंत विच बेअंत खालसे जंग दे मैदान विच लड़दे होए शहीदी मंडला विच पहुंच गए। मैनू उदों ही पता लगा कि मैं हुण की कर सकती सी। मैं उन्हां शहीदां दी देह नू सत्कार सहित अगन भेट सकती सी। कोर हनेरा सी ते बहुत ठंड भी सी पर तां वी मैं लक्कड़ कट्ठी करके लियांदी। इह बहुत औखा काम सी मगर गुरबाणी ने मैनू ताकत बख्शी। एक एक करके मैं अपने भरावां दी देह चुक के लकड़ां उत्ते रख दी गई।
1: ਵਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਪਾਂਬਣ ਨਹੀਂ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਉਹ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ।
1: ਇਹ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ।
7: ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
2: ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ।
5: ਉਹ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?
3: ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5: ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ।
3: ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ।

0: बस एक औरत है हा, एदे नाल ता मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निग्गी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो, सिखी विच रह के।
4: उदो जिन कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रा नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा कजरी धरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: सिखी दी ए निशानी। शब्द गुरु रामदास जी। व्याख्या जगदीप सिंह। चित्रकार प्रदीप सिंह।
1: सिमर सिंह, कृपा कौर, उठो उठो, की तुहानू वधिया नींद आई?
2: अखीरली चीज जेड़ी मनु याद है, मम्मी जी ने करो बेनती गोना शुरू ही किता सी, ते मनु नींद आ गई।
3: अजीत वीर जी, मनु बड़ा चंगा लगता है जदो तुसी मनु जगांदे हो।
1: आओ वेखिए, पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है?
2: मैं जित जावांगा।
3: मम्मी जी, की मैं बबल पाथ ले सकती हां?
1: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुम्हें प्रसाद सवाइये करेंगे।
2: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
3: की मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
1: आओ अनंत साहिब करिए,
2: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
3: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
1: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
2: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन, मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हां।
3: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे कोल तुहाडे वर्गे वीर हन।
1: ओ वेको, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
2: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन।
3: एक दिन मैं भी पंच प्यारियां विच शामिल होवांगी।
1: इस शब्द विच एह सिखिया मिलदी है कि सानू वाहेगुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
2: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
3: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।